0: 7 La Khanda Radio ITN
1: ओए वाये सट गया थावे सट गेदर रखी हुआ थे आवे सट गेदर याने के तमाई अमारुम वेडी
2: सलन ललन दलुव विलस नितंब न लोला
3: ये डाल में डाले ना तेरे नाम तीन ना इवे